0: 10 out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल ओके देन.
0: भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली. तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली.